कसम अल जाए हर खान नान कसम अल जाए दबा नि दबा दबा मबर गदर निदा निदा गदे निदे दन दबा दबा मर पम दबा रे मदा दन निदा दबा दबा मबर गदर रे गदा निदा दन निदा दन निदा दन निदा

गुरु अमर गुरु की सत, गुरु अमर गुरु श्री सत, कल जुग राखी पत, अग्नि देखत गत, चरण कमल दास, चरण कमल दास, सब विद्मान्यो मन, तभी पयो प्रसन्न, गुरु जोग तख्त दियन, गुरु रामदास, ना ये रामदास सरी, ना ये रामदास, ना ये रामदास सरी, दस सरी दस सर, ना ये रामदास सरी, ना ये रामदास, ना ये रामदास सरी, हम अब गुण

सुतदारा शोप्रीत लगाई एक उत्तम पल सुनियो गुर संगत एक उत्तम पल सुनियो गुर संगत।

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: कोई अगला पड़ा आएगा नरमकार मेर करेगा ओदी रजा की जो कुछ मालिक देगा वो सब्र ते संतोख नाल छकांगे मारा झूठी गल मेरा तो तुरना ही मुहाल है सिद्धी गल कीर्तन हो गया और प्रशादा चाहिए डाडी भुख लगी हजूर कहने लगे मरदाने काबर ना नरंकार रोटी देवेगा मारे कर देवेगा आखो श्री भाई कई दिन हो गए रोटी का मुंह ही नहीं देखिया टक्की नहीं रोटी क्यों एवं किवें कीर्तन हो हजूर कह लगे मरदाने कोई नहीं उदास ना हो रोटी रब देवेगा पर अजे सबर कर मारे मेरे तो सबर नहीं जोंदा ए पिया जी रबाब जा तो रोटी दो नहीं तो मैनू आ गया दो आखो श्री भाई मेरे धन गुरु नानक फते पातशाह मरदाने फिर प्यार नाल कहिंदे फिर सत्कार नाल कहिंदे हन मरदाने तू चढ़दियां गलां चरो महाराज बड़ा चिर चढ़दियां गलां च रहा हुण नहीं रहा जांदा रोटी च हजूर कहण लगे मरदाने इत्थे तां प्रबंध नहीं हो सकदा मरदाने ने कहा महाराज ये प्रबंध नहीं हो सकदा ए पिया जे रवाज ते मैनू छुट्टी मरदानी देख ले तेरी मर्जी कथे आया था करो कथे ही जाते महाराज जाते तो सही आप तुम छकते छकते पता नहीं तहू तो भुख लगती नहीं है पर मैनू तो डाढ़ी लगी हुई आखिरकार प्यारी सात संगत अज मरदाने ने भुख दे दुख वजो कई तरह के जवाब सवाल भी हजूर नार किते आखिरकार जवाब दे के तुर पे आखुश दी गई पहला इन क्लियर बाबा तू तो निरंकारी सच्चा साथी वे के तेरे नाल तुरे

सच्चे लाल नु जौरी कर सकते। कीर्तन दे सोने लाल नु भाई गुरसिख परख दे तुसी परख रहे हो आकर ताई जुड़े बैठे हो, पर मर्दानिया जिथे इस चीज की परख नहीं है उथे नहीं रहना चाहिए। महाराज मसा मसा एक चंगा स्टेशन आया सी ते तुसी उपराम ही हो गए ना मर्दाने इथे नहीं रहना। बाबा फिर तुसी जाना है ता जाओ, मैं तो नहीं जावांगा खुशरी भाई। मर्दानिया बचन मन महाराज फिर मन लवांगे चंगा फिर हजूर तुर पे मर्दाना पदार्था दे लालच आके गुरु तू गुरु नु जवाब देके इथे रहन लग गए। हजूर तुरे कहन लगा महाराज अनवाकुर जगह है आप अगे है तुसी ले आंदा है उस दिन रह के जिथे कहोगे मैं आ जावांगा। हुण इतनी कृपा तो करो भी दो चार टके तो रोज मिलन आखोश्री भाई। हजूर कहने लगे मरवानी चंगा तो सी साढ़े नाल ही चलता है पर तेरी मर्जी है पदार्था के लाल पिछले रहन लगा है जगह चंगी नहीं है अगे तेरी मर्जी। महाराज तुसी चलो मैं आ जावांगा आखोश्री भाई। चंगा मरदाने टके तो तेन मिल जाएंगे कीर्तन जो करवा रहा है। हजूर चले गए ये मरदाना शहर च आ गया गुरु के बचन द्वारा चार पांच टके रोज मिल जाते हैं फिर कदे जलेबियां कदे मालपूड़े कदे बदाम कदे घ्यो ही छक लेंदा या खुशरी भाई। थोड़े समय के अंदर ही मरदाना मोटा था खुराक भी चंगी मिल गई। एक दिन अचानक ही प्यारी साध संगत किसी का मकान डिग पिया मकान के हेठा एक आदमी आके मर गया। जिन्हों का आदमी मरिया सी उन्होंने जाके बादशाह को फरियाद की बादशाह सलामत साडा आदमी मर गया भी किस तरह मरिया है फलां सिर के मकान के हेठा आके मरिया वह मकान डिग पे बादशाह।

चलिए। सिख ने कड़ी चाली चलनी है जिदे गुरु प्रसन्न हो चाली चली, जिदे गुरु की प्रसन्नता मिलनी वो चाली चली, दूजी नहीं चली। सिख कदे भी वो चाली नहीं चलता जिदे कलगियां वाला खुश ना हो। गुरु नु खुश करिए प्यारी साज संगत, जे दुनिया नु खुश करना चाहते हैं तो गुरु नु खुश करिए। गुरु किस ते खुश होंदा है? जेड़ा गुरु दी चाली चल के गुरु दे हुक्म च रहिंदा। जो भी गुरु का हुक्म, अमृत छकना, सोने दाड़ी केस रखना, गुरबाणी नाल जुड़ना, सच धर्म की किरत करनी, सच बोलना, यह है गुरु दी चाल। तो जिहड़ा सिख है वह गुरु दी चाली चलेगा। फिर गुरु दी चाली केड़ी? हजूर फरमाउंदे हैं।

जो ए जानो सो ए नाहे। जो कुछ भी तुसी समझदे हो हुण तक जां जानदे हो लाइफ बारे, अपने रिश्तियां बारे, अपने आप बारे, महाराज कहिंदे ओ सच नहीं है। अगर एक इंसान फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है अते उसनु पूछा जाए कि तू कौन है, तो ओ दसन जी मैं डॉक्टर हां, तो ओ ते सिर्फ उना दे एक सर्वाइवल दा साधन है, उना दा पेशा है, उना दा धंधा है, पर ओ डॉक्टर नहीं हन, ओ कुछ होर वस्तु हन। उन्होंने अपने आप नू आइडेंटिफाई कर लिया अपने प्रोफेशन दे नाल, पर प्रोफेशन अलग चीज है। इस तरह कोई आखदा जी मैं आ हां, कोई आखदा मैं आ हां, कोई आखदा मैं आ हां। गुरु बाबा जी आखदे हन ए जो तुसी समझदे हो तुसी ए नहीं हो, तुसी कोई होर वस्तु हो। सो अज दा कीर्तन ए है कि महाराज जी आखदे हन ऐ ग्रिस्तियो, ग्रिस्त दे विच पै के तुसी ए भुल गए हो कि तुहाडे जीवन दा निशाना, तुहाडे जीवन दा मनोरथ इतने एक समय दे विच विच वी उही है जो उस सन्यासी उदासी दा है, वो है अपने आपे दी खोज, अपने आप नू लभना, अपने आप नू पछानना। कहिंदे हन साडियां नजरां च केवल उही उही ग्रिस्ती कबूल है, ओयो इस सन्यासी उदासी कबूल है जिसने अपने आप नू पछाणिया है, नहीं ते निरे ग्रिस्ती बन के तुसी को बहुत वड्डा कर्म नहीं कीता कि गुरु नानक देव जी महाराज प्रसन्न हो जाणगे कि तुसी ग्रिस्ती हो। काम तुहानू पूरा करना पैना है, मेहनत तपस्या तुहानू भी उतनी करनी पैनी है जितनी दे नाल के तुसी उस गोल तक पहुंच जाओ, अपने आपे नू पहचान लाओ। जे नहीं पहचानिया तो यह दुनियादारी दे ही जो मसले हैं इन्हां नू नजिठण च लगे रह गए हो, तो तुसी भी मनुखा जन्म की बाजी हार गए हो, तुसी सही ग्रिस्ती नहीं हो। तो जे महाराज जी ने ग्रिस्त नू महानता दिती है तो उस दे उते कोई उन्होंने खासियतां भी लगाईयां हन कि जो ग्रिस्ती है वो इस तरह का होना चाहिए है, उसका गोल की है और ग्रिस्ती ने उस गोल नू अचीव किवें करना है। और बाणी च उन्होंने यह दस्या है कि ग्रिस्ती उस गोल नू अचीव करन दी बजाए एक खो किथे जांदा है, गुआच किथे जांदा है, भटक किथे जांदा है, इसका बाणी दे विच जिक्र करदे हन। असीं सुणांगे प्यार नाल, आओ एक दफा इस लाइन नू गाओ सुनो प्रेम नाल। महाराज जी आखदे हन

आपे पुरुष आपे ही नारी, रब आप ही पुरुष है आप ही नारी, कोई अलग अलग नहीं है। तो कहते जी थी इन्फॉर्मेशन है अपने आपे के मुतलक उसका भी तुम सही पता नहीं कि तुम कौन हो, वो तुम खोजना है, यह खोज का मार्ग है, यह ढूंढना है, यह लभना है, अपने आप को बुझना है, अपने आप को पहचानना है। गुरु ग्रंथ साहब जी का असं पाठ करते हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का जो पाठ करते हैं तो एक ही गल किते ओ बुझना कहते हैं कि भी तुसी अपने आप नू बुझना है, किते कहते हैं अपने आप नू लभना है, किते कहते हैं अपने आप नू पछानना है। तो आओ एक गल अज स्पष्ट करके अपने हिरदे च वसाईए, इस उपदेश नू लैके जाइए कि असी अगर गृहस्थी हाँ तो साडा मुख जो टारगेट है, मुख गोल जो साडा है वह है कि असी अपने आप नू लभना है, अपने आपे की खोज करनी है।

0: सो गिरही सुदास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणे। आओ थोड़ा अपनी असलियत वाल नजर मारिए। मैं एक सवाल उठाना हां, असी सारे जितने इत्थे ग्रिस्ती बैठे हां, कि साड़ी जिंदगी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यह है कि असी अपने आपे की खोज करनी है, इसका अपने अंदरों उत्तर लभो, अपने अंदर रिफ्लैक्ट करो, अपने अंदर ध्यान नाल इस गल का जवाब लभो कि तुसी जिंदगी दे विच, असी जिंदगी दे विच कि यही मुख काम जो है उसनू अपने मुख रखिया होया है अपने आप नू पहचानन दा, जां ये कोई इशू ही नहीं है साड़ी लाइफ का, जां ये कोई साडे वास्ते खास कोई समस्या नहीं है, जां ये कोई साडे वास्ते बहुत अहम चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अपने अपने अंदरों जवाब लभण की सात संगत कोशिश करो। गुरु बाबा जी की हजूरी दे विच असीं बैठे हैं ईमानदारी दे नाल कि असीं अपने आप की खोज करन दे वास्ते भी कोई टाइम निकालते हैं या नहीं निकालते, जां कोई साडा ध्यान है इस पासे या नहीं, साडी सोच है इस पासे या नहीं, कि असीं अपने आपे की खोज करन दे विच लगे हुए हैं जां दिनों दिन अपने आपे नूं गवाई ही जा रहे हैं, खोई ही जा रहे हैं। गुरु बाबा जी ने स्पष्ट आख दिता है कि सो गिरही ओही ग्रिस्ती असल ग्रिस्ती है, ओही सन्यासी असल उदासी है जिसकी जिंदगी का आदेश एक ही है कि उसने अपने आप नूं लभना है कि मैं कौन हां, मेरी असलियत की है, अपने मूल नूं पछानना है। महाराज जी ने साडे ते सवाल भी किया है, कहिंदे हन सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, कहिंदे भी तू कौन है कितों आया है, तेन इस चीज की खबर है। बस जिस दिन तू ये लभ लेगा कि तू कौन है, जिस दिन तू ये पहचान जाएगा कि तू कौन है, उस दिन कहते हैं अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया, अपने आपे नू पछानना ही नाम की प्राप्ति है। कोई पूछे नाम की प्राप्ति की चीज है, नाम की है, अपने आपे नू पहचानना ही नाम की प्राप्ति है, और अपने आपे नू पहचानन तो बाद के मैं आ हां, फिर मैं अपने आप नू असल तौर पे प्यार करांगा कि मैं आ हां। जदों किसी नू ये पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हां, उस दिन उसनू अपनी असली हस्ती का पता लगेगा जो कितनी महान है, वो प्यार करन दे योग है, और फिर उसनू ये भी नजर आएगा कि ये जो दूसरे हन ये कौन हन, मेरे पे इना अंतर की है। उथे जाके ड्युअलिटी द्वैश मेर ते सब खत्म होएगी जदों अपने आपे दी पहचान हो जाएगी। सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणिया। सो ग्रिस्तियां नू इस भुलेखे च इस टपले च इस गलत फहमी च नहीं रहना चाहिए कि असी इना दुनियावी रुझेवियां दे विच इतने रुझ जाइए अते इतने सुस्त हो जाइए, इतने आरामदेह हो जाइए, इतने लेजी हो जाइए कि एक सन्यासी साधु वर्गा जीवन ग्रिस्ती का भी होना चाहिए है, ओ ना हो। आपनू नहीं बुझिया कोई भी बख्शिया नहीं जाएगा, चाहे वह ग्रिस्ती है, चाहे कोई काजी है, चाहे कोई मुल्ला है, चाहे कोई जंगम है, जोगी है, पगवे पेघवाला है, कोई भी चाहे है, जितनी देर तक अपने आप की पहचान नहीं कर लेंदा अकाल पुरख की दरगाह दे विच कहिंदे ओ बख्शिया नहीं जाएगा। कहिंदे हन काजी मुल्ला होवे शेख, कोई काजी होवे चाहे कोई मुल्ला होवे, साडे वल लगा लो कोई भाई होवे, ग्रंथी होवे, कीर्तनिया होवे, कोई शेख होवे।
1: जोगी जंग में पगवे पेख,
0: कोई जोगी होवे, कोई जैन मत दा होवे, कोई पगवे पेख वाला होवे। कहंदे हन
1: को गिरही कर्मा की संद,
0: चाहे कोई गृहस्थी होवे गृही होवे, जिहड़ा सारे कर्म कुर्म ते निभांदा होवे, कदे पाठ करा लिया, कदे लंगर करा लिया, कदे तीर्थां ते जाए, दर्शन दीदारे कर आए, अते बाकी दुनियावी जिम्मेवारियां भी सारियां निभांदा होवे, लोकाचारी भी पूरी करदा होवे, को गिरही कर्मा की संद, सारे कर्मां नूं पूरी तरह मिलांदा होवे, करदा होवे, पर कहंदे हन

मुनि गुरमुख सुहाग गुरमुख उजल हंस है मनमुख है काग मनमुख उदे कमल है गुरमुख सो जाग मनमुख जो

जेकर सूतक मनिए शब्द सूतक होय, गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होय, जेते दाणे अनके जिया बाज न कोय। पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोय, सूत क्यों कर रखिए सूत पवेर सोए।

पहला सुचा आप होए सुचे बैठा आए सुचे अगे रखियो कोई ना पिटियो जाए सुचा होए के जीविया लगा पढ़न श्लोक

0: खलू पवन गुरु पानी पिता माता
1: धरत महत
0: दिवस रात तो ताई काया खेले सगल जग।

0: मेरे नेत्र ना छे, मेरी अखा नु कुछ ना आख कांगा, क्योंकि इना नेत्रां च साईं दे वेखण दी सिक है और सारे शरीर नु बेचक खा ले। मैनू जरा भी परवाह नहीं, जो बन जांदे ना डरा, जे सौ प्रीत ना जाए। ए नेत्र प्यारे दी इंतजार पे कर देना, कद आवेगा। इतना समा बिताया, अजे भी रब नहीं मिलिया। प्यारी सात संगत आखो सतनाम, मायूस होके बाहर फरीद एक दरख्त दे हेठा बैठ गया। दरख्त दे उत्ते पंछी चिड़िया बोल रही है। फरीद ने तख्या, पंछी रौला पा रहे हैं, चिड़िया बोल दिया हैं, मेरी बंदगी दे विच खलड़ पा रही है। अंदर गुस्सा आ गया, तलखी आई, तकिया ते किया, चिड़ियो तुसी मर क्यों नहीं जांदी? कहण दी देरी सी, सारिया चिड़िया दरख्त नूं डिग पईआं ते धरती ते तड़फण लगी। ए तां सचमुच ही मर गईआं, तड़फ पईआं। दिल च दर्द आ गया, क्योंकि सिमरन करने वाले का जिहड़ा मन हुंदा है वह बड़ा कोमल हुंदा है। दुखियों नूं वेख के दुखी ते सुखियों नूं वेख के मालिक का शुक्र। मन बड़ा नरम। फरीद ने ठंडा सा लिया, ओ पापी मन, तू भी पंछी ते ए भी पंछी, इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया? विचारियां तड़फ रही हैं, दर्द आया, बचन किया, चिड़ियो उड़ जाओ, कहण दी देरी सी, सारिया चिड़िया उड़ गई। हैं, मेरे भी तो शक्ति आ गई है, भावे रब ने मिलिया पर रब की शक्ति तो आ गई है ना, मारिया भी जीवाल भी दिता। अंदर हंकार आया, सारी तुर पिया। गर्मी दी मौसम सी, सामने नगर है, पिंड दे बार बार एक खूह, खूह दे उत्ते एक नौजवान मुटियार पानी पी पर दी, प्यास लगी, चलो मना पानी पी। फरीद जी खूह दे कोल आए, इस नौजवान लड़की वल तकिया ते किया, बेटी मैनू डाढ़ी प्यास लगी है, पानी दा घुट पिला। पानी भरन वाली मुटियार ने फरीद वल वेखे, पानी दा डोल खूह विचों कढ़िया ते बाहर डोल दित्ता। हैं, इसने मैनू पानी नहीं पिलाया। फिर फरीद ने कहा, बचड़ा मैनू डाढ़ी प्यास लगी, मैनू पानी दा घुट दे। दूजा डोल कढ़िया, इस बीबी ने यह भी बाहर डोल दिता। फरीद नूं गुस्सा आ गया, केडी गुस्ताख लड़की है, इनू ये पता ही नहीं है कि मैं प्यासा, मेरे लब सुकते जाते हैं। दो बेरी किया है, पानी तो पिलाना एक पास है, मेरे वाल वेखदी नहीं, पानी कढ़ के बाहर डोलदी। गुस्सा आया ते कहा, मैनू पानी क्यों नहीं पिलांदी? तो पानी भरन वाली लड़की जिसका नाम सी माई रंग रतड़ी, तकिया तिरछी निगाह नाल ते कहा, ओ फरीद, ए कोई जंगल दियां निखसमियां चिड़िया नहीं जिन्हां नूं मार के जवाल लवेगा, मैं खसों वाली आखो श्री वाहिगुरु, सारे आखो वाहिगुरु। कोई रसना इस पवित्र पावन नाम तू वांझी ना रह जाए। गुरुदरबारे जुड़े हो, सच का वणज कर रहे हो, आओ भाई सच दे व्यापारी हो, प्यार नाल सारे आखो सतनाम। फरीद ने सुने, पानी दी प्यास तो बुझ गई, ए प्यास लगी है जंगल बियाबान च में चिड़िया मार के जवाली। इंसान ता की उथे हैवान ही कोई नहीं थी, पर तेनू किवें पता लगी? बेटी तेनू किस तरह पता लग गया? इन्हें हस के कहा, मैनू सब पता है, है? मैं इतनी बंदगी कीती है, अजे मेरे अंदर ही अंतर्यामता नहीं आई, तेरे अंदर किस तरह आ गई? हाथ जोड़ के फरीद ने पूछया। माई रंगरतरी ने कहा, फरीद ये सारी कृपा मेरे पति दी है। पति दी किस तरह? सारी विथ्या दसी। फरीद, माता पिता ने मेरी शादी कर दी, मैं अपने सहुरे घर चली गई, अद्धी रात का समा सी, मैं अपने पलंग ते लेटी हुई सी, अचानक ही मेरे कन्ना विच आवाज आई, पानी। आवाज सुनी, तकिया किधरों आई है ये आवाज? वेखिया मेरे सुहाग ने पानी मंगया। सोचे पहला दिन है, अपने बाबल दा देश छड़ के अपने पिया दे घर विच आई, किसी होर ने पानी नहीं पिलाया मेरे पति। उठ लोक लज्जा नूं त्याग के फरीद पानी दा छन्ना भरिया, अपने पति दे पलंग दे कोल पहुंची, पर फरीद मेरा पति फिर सौं गया। असी आखो सिरी लाए, नींदर आ गई। नींदर बड़ी पर्वत है,
1: नींदर बड़ी पर्वत है, कहने पूरी उत्ते भी आ जाती है नींद। सोचिया
0: जी मैं भी जाके सौ जावांगी तो पति प्यासा है, इन्हें पानी मंगया है, ते जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी, जे मैं जाके आराम करदी हां पति प्यासा सुता पे, ते जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी। ए सोच के फरीद मैं अपने पति दे चरणा वल पानी दा भरिया छन्ना लेके खड़ो गई, जिस वेले उठणगे उस वेले पी लैणगे। काफी समय दे बाद मेरे पति ने नेत्र खोले, मेरे वल तकिया, भागवान तू इत्थे किस तरह? सारी विथ्या दसी, तुसी पानी मंगिया सी, पानी दा छन्ना भर के तुहाडे कोल पहुंचे, तुसी सौ चुके सो, सोचिया तुहानू प्यास लगी है, जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी है, इस वास्ते इस इंतजार विच पानी दा छन्ना भर के खड़ोती हां, मेरे साईं जी पानी पीओ। फरीद मेरा पति उठिया, मेरे हत्थां तू छन्ना लेके पानी वाला उसने अपने मुंह नाल लाया, फरीद मैं सच कहिंदी हां।

कोई रोज रोज नहीं मिल सकता। जो सेवा मिल गई है तो कर तदे तो मार्ग मक्ष गंगा राम रात दिन भांडे मांझी जाने ते गुरु के दर्शन की उड़ीक रात दिन उड़ीक कर जाए कदों भागा वाला दिन चले तन गुरु अमरदास पातशाह जी के दर्शन गुरु बख्शिश कर जिस तरह बख्शिश हो रही गंगा राम की सेवा थाए करा शामा क्योंकि कहीं ने इशारा किया समा सुख की घड़ी का पता ही नहीं आखो सी दुख की एक घड़ी आ जाए तो एक चीज नहीं आ जाए पता ही नहीं लगता किस तरह समा यही है मालिक धन गुरु अमरदास पातशाह आप सारी जुड़े मार्ग ने मेहनत की तो आप जो सेवा मिल जाए गुरु का की करो ते इस उड़ीक आप शामा तक इंतजार करिए गंगा राम दे सदके सानू भी दीदार का किरका मिल जाए फिर साडा कीर्तन कीता सुनिया पर गुरु घर किसी की कामना जाया नहीं जिसने भी तन तन मन धन न जिसने भी सेवा की थी है हजूर फरमाते जान के सिमर सब कुछ पाइए बिरथी उसी भी कारना कर अपनी कारना भी गंगा राम की कारना किस तरह गुरु ने सकते अमृत साढ़े टाइम साढ़े छेर का कीर्तन आशा जी अमृत वेला सच ना बड़े आई जिदा नाम ही अमृत वेला है वो उस की कर समय अनुसार आओ कल पूर्णमासी क्योंकि पूर्णमासी का नाम लीए तो धन गुरु नानक पातशाह खां के सामने पूर्णमासी गुरु ने माण बस पूर्णमासी ऐसी पूर्णमासी आई रब प्रगट हो गया खुश रही ताइयो बाबा ने सिंह जी उथे चौबी घंटिया का सत्संग है नानक डेली कोई आए चाहेगा पर पूर्णमासी का समागम खास होता है दास इंडिया विच होवे बाबा जी की बख्शिश द्वारा नानक सर हाजरी भरदा ऐसी साई की प्रेरणा अनुसार पूर्णमासी तुहाडे कोल आई तुसीं तां जी जुड़े होए हो तुहाडे दर्शन करके मैं भी उस पवित्र पावन याद हिरदे च वसावांगा सुरत नानक साहब पहुंचा के दर्शन कर फिर पूर्णमासी आप आओ गंगा राम जी साखी सुन के अपना जीवन सफला करो आप जिस गुरु ने सानू ये दात बख्शी ओदा शुकराना अदा करिए यही अरदास करिए पले अमरदास गुरु तेरे तेरी मंगी तेरी रहमत है मेरे पातशाह की तासे कलयुगी जी थां थां ते कलयुग रुकावटां पे पाए माया कई रूप धार के पिछड़ी किथे आए अजे आ गए तो मार्ग दे दारू प्राप्त करके गुरु नु पा गए आखो सही गुरु नु पा गया जीवन सारा का सारी मत के करी उस तो प्राप्ति करी धन गुरु नानक पातशाह आप जी के धर्म परम सारे गुरसिख माई पाई धन गुरु राम दा अमरदास पातशाह जी आप जी का आगमन गुरपुरब मना
ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਦਰ ਵਜੋਂ ਪੌਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ

राग गौड़ी बैरागण विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हैं। इस दी जाति औड़व वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।